0: होलसेल क्लब विच कीमतां घट हो रही हैं।
1: पहला नालों में घट
0: आ वेखो सैन पेलोग्रिनो दियां चुड़ियां हुई किस्मां 6x330 ml सिर्फ $5.99 च।
1: ये तां होर भी घट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी घट।
1: ओए तू किथे जा रही है?
0: अपने बिजनेस ले पैसे बचाउन। तुहाडे बिजनेस ले पैसे बचाउणा साडा बिजनेस है। इस लई असीं कई आइटम्स दियां कीमतां घट कर रहे हां। कोई फीस नहीं। होर जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो।
2: Wholesale Club, whole lot of value.
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਗਈ।
1: ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
1: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, एता गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: Swing into golf season with AM 530 at the MCPA 33rd Annual Golf Tournament, June 10th at Piper's Heath Golf Club. Sponsored by Medi Systems, Avenue Building Group, Liuna Local 183, Liuna Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fee, support community services, and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. MCPA, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: जरूर ट्राई करो। स्ट्रीट फूड, गोलगप्पे, टिक्कियां, समोसे, भल्ले, डोसे, गर्मा गर्म जलेबियां सारा दिन अवेलेबल हुंदियां ने। टिफिन तुसीं लगवाउणा है, घर केटरिंग करवाउणी है, लाइव तुहाडे कोई फंक्शन है, कोई तुसीं हाल बुक करवाउणा है, हर एक सर्विस इन्हां नूं तुहानूं मिल सकदी है। फोन करके किसी किस्म की जानकारी तुसीं लैनी होए लै सकदे हो। 905-450-33-33-114 कैनेडी रोड का नंबर और कथूरिया साहब का नंबर है 416-791-100। इन्हां तों भी तुहानूं किसी किस्म की जानकारी तुसीं लैनी होवे तुहानूं मिल सकदी है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। उम्र विच मिलिया सुख मनुख नूं कदे समझदार नहीं बनन दिंदा,
0: बिलकुल,
1: पर घट उम्र विच मिलिया दुख
0: बर्दाश्त करना सिखाउंदा है, सुख तुहानू अवेसले कर दिंदा, ओह तो तुहानू दुखी कर दिंदा। बिलकुल,
1: हुण उस्ताद थोड़ा कहूगा मैनूं रिवर्स कर दो।
0: हां बिलकुल बिलकुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: मेहरबानी।
0: सो दोस्तो, तुसी भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि जिंदगी सानू जेड़ी मिली है ए इको एक है, इस नू ही सानू खूबसूरत बनाउणा पैणा है। किस आदमी दी जिंदगी दे विच मुश्किलां नहीं हन, अगर असी अपनी जिंदगी दीआं मुश्किलां नू वेख के डर जावांगे ना तां ओह कायरता होएगी, ओह जिंदगी दे विच नाकामयाबी होएगी। अगर जिंदगी दे विच आउण वालीआं मुश्किलां नू हस के असी कबूल करांगे, उन्हां नू दूर करन दी कोशिश करांगे, उन्हां नू दूर करन दे रस्ते लभांगे, उन्हां नू दूर करन दे लई अपने दृढ़ निश्चय दे नाल मेहनत करांगे, जिस भी तरह की करनी चाहीदी है, तां फिर जिहड़ी कोई भी मुश्किल जिहड़ी है ना उह दूर हो जांदी है। कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं हुंदी जिहदा कोई सल्यूशन जिहड़ा ना मिले। सो तुसी हुण आपां इक गाणा होर सुणीए, बहुत पुराना, बहुत पुराने, तुहानूं समें दे विच लै चलदे आ, और गाणा कड़ा खूबसूरत है, ओ बड़ा खूबसूरत गाना तुसी सुनोगे ते मजा तुहानूं आएगा। सुनो जरा एक प्यारा जिहा गाना।

0: एक्सपर्ट?
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स, कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है, ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
4: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਪ PUNJABILEHRAN। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

0: 900 82 11 8211 कुंजन बहुत शुक्रिया थोड़ा, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू
0: 905-451-8211 बच्चों के दंदों का इलाज बिल्कुल फ्री हों 17 साल तो घट होंगे ने बजुर्गों का हों तो तुम जिन्हें भी लोग जा रहे हो अगर कोई भी पहले 5 लोग जोड़े कॉल करते हैं उत्थे तुम अपने बच्चों का इलाज करवाना या अपना तुम एक इलैक्ट्रिक ब्रश आ तो फ्री मिलेगा इलैक्ट्रिक ब्रश थोड़े मगरले दंद ने ना जो साफ नहीं होंगे अकल जान नहीं अकल नहीं साफ होंगी अकल बहुत साफ करते करते उम्र लंघ जाती है बंदे की कहते इन हजे तक अकल नहीं आई इनू हजे तक अकल नहीं आई सो अकल जार जी है वह साफ कर दिता थोड़ा मगर तक जाता ब्रश है इलैक्ट्रिक आ अपने आप घूमता तो दूसरे का पेस्ट में बहुत वधिया काम करता रेडियो आवाज कहना तुम चैकअप तो बाद असी उत्थे इन्हां कोल 50 तो वध ब्रश रखे हुए ने पांच पांच करके दिंदे ने ते पांच जणिआं नूं बिल्कुल इलैक्ट्रिक ब्रश बिल्कुल फ्री है जे तुसीं चैकअप करवाउणा सिर्फ चैकअप ही करवाउणा 905-451-8211 पासवर्ड आ साडा रेडियो आवाज कह देणा तुहानूं ब्रश फ्री मिलेगा 905-451-8211 ते कॉल करनी है।

रेनु जी थैंक यू वेरी मच, आपका मैसेज अभी आया है। कहते हैं तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है, तू मेरी पहली और आखिरी वफा है, तू चाहा है तुझे चाह से भी पढ़कर मेरी चाहत और चाहत की मेरी जान इंतहा है तू।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबी को। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca.
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vichon, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vichon, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन, इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल ब्लैक फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल ब्लैक फूड फेर नंबर लै गया। आटा, दाल, चावल, दाल सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल ब्लैक फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल ब्लैक फूड।
8: Vimala village la village padadi piyuch jant padda, Vimala village la village, Vimala village la village padadi। Sasrikal ji, main ha tuhaddi apni Shipra Goyal, te tusi sare sun rahe ho Vatno Dur Radio Sukhi Nijjar ji de naal।

0: पैसा ये पैसा ये पैसा नागपाल साहब ये पैसा पैसा पैसा कर दिए तो पैसे दी लगा दूं ढेरी। अच्छा तुसी ये दसो आम तौर पर बंदे नूं ये लगता हुंदा मोस्टली तौर पर ना जे साडे भी दिमाग दे विच आवे तां सानूं ये लगता कि यार भी सरकार नूं की फायदा वा जे तुसी कहिंदे हो कि सरकार ग्रांट दे रही है सरकार नूं की फायदा सरकार ने तो उदों जदों दित्ते सीगे 40-40 हज़ार बाद चो कहता कि वापस कर दो इहदे च तां कोई वापस वूपस वाला जां इह च कोई इह च कोई कैच तो नहीं है कि जो घुंडी तो नहीं जी कई बार हों कोई हिडन घुंडी होंगी है कई बार सूँ लगता हूँ कि यार हरेक चीज़ के बच्चे भी कोई ना कोई किसी का कोई तो फायदा होगा कौन किसी दिता है ना इदा पैसा सो सरकार की भी कोई घुंडी है भी वो चाहती है कि पर उन्होंने को जाना तो कुछ नहीं तो गला कोई देता कुछ नहीं रहा आ ही रहा थोड़े को।
1: अब आप ये देख के चले चाइल्ड बेनीफिट है कोई कुंडी नहीं है उसके अंदर।
0: हाँ चाइल्ड बेनिफिट तो मिलता।
1: हाँ जी उसमें इस वाले काम में भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट देख के देखने के बाद फंडिंग देती है जी। नोटिस ऑफ असेसमेंट डिपेंड वेरिएशन डिपेंड करता है अगर आपकी इनकम ज्यादा है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे यस तो फायदा नहीं है आपको।
0: नहीं।
1: सिंगल है तो भी फायदा नहीं है।
0: अच्छा
1: और डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नोटिस ऑफ असेसमेंट दे इनकम जितनी कट आएगी कम आएगी
0: कोई हिडन चीज ना नहीं है जड़ी जड़ी असी पूछनी ना भूल जाइए तुसी दसनी भूल जाओ जां तुसी कहो तुसी कड़ा पूछया सीगा कोई हिडन
1: नहीं इसके अंदर नहीं है। यहां पे एजुकेशन के लिए फंडिंग करेगी गवर्नमेंट आपको बिजनेस के लिए फंडिंग नहीं मिल रही है आपको।
0: हां एजुकेशन के लिए मिल रही है
1: एजुकेशन के लिए एजुकेशन में पेरेंट्स भी पैसा लगाते थे ना हमारे ऊपर वो हमको टीका रखते थे हमारे लिए कि टीका बजाएंगे पेरेंट्स नहीं रखते थे ना अच्छे स्वभाव से वैसे ही गवर्नमेंट हमें माता पिता की तरह है।
0: नहीं अगे असं पता की अगे असं यह सुनते हैं जिम्मे सा बच्चे यूनिवर्सिटी चले गए उन्होंने उस सब मिल जाती कई बार मिलती कई बार नहीं भी मिलती थी ये kind of उदां दी वी हैगी है जिहड़ा हैगा बे एक तरह दी
1: सिमिलर है
0: सिमिलर ही उदां दी फंडिंग पढ़ाई लई दे रहे
1: हां पढ़ाई के लिए दे रहे
0: हैं जरूरी नहीं कि तुसी हुण पढ़दे हो तां ही तुहानू मिलनी है तुसी नहीं भी पढ़दे तां भी तुसी मतलब पढ़दे तां मतलब ए है कि जे तुसी हुण यूनिवर्सिटी जा रहे हो ये नहीं भी तुसी यूनिवर्सिटी जाने हो तां ही तुहानू फंडिंग है जे हुण तुसी सपोज करो कि मैं ट्रक चला रहा जां मैं रेडियो कर रहा जां मैं कोई होर टैक्सी चला रहा जरूरी नहीं तुसी जिहड़ा मर्जी काम करी चलो कोई भी बंदा किसी भी उम्र दे विच लै सकदा इहदा फर्क इह हैगा।
1: बिल्कुल जी यही चीज है एज लिमिट की कोई देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ एज गवर्नमेंट की पॉलिसीज में
0: गवर्नमेंट ये नहीं सोचती बेचारे हुन बाबा 70 साल दा पढ़ के हुन की लेना मां
1: चार्टर ऑफ राइट्स फ्रीडम नाम की कोई चीज है इस देश में
0: वो कदे पढ़ो
1: स्किल डेवलपमेंट है।
0: अच्छा ये फिर ये भी है कि एज के हिसाब नाल वो कहंदे भी ओके हुन जिहड़ा 65 साल दा बंदा भी तू एच बैक दा मामा भारा कम औखा ते एसी यूसी दा करना भी वो किथे फिर वो एज के हिसाब नाल कोर्स दिंदे ने
1: नहीं नहीं नहीं कोई भी चूज कर कोर्स ले सकदे हो। हां जी लेकिन ज्यादातर क्लाइंट्स चूज करदे ने फुली ऑनलाइन सोखे जे कोर्सेज जो कि वो ट्रक भी चला रहे ने हाउसवाइफ बच्चे मैनेज कर रहे ने हाउसवाइफ ऊबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर सेल्फ एम्प्लॉयड
0: होके है जे एक्सपीरियंस होया कि किन्ने 7-8 साल 10 साल हो गए तुहानू करदे नूं ये कम कोई एदां दा एक्सपीरियंस होया कि फंडिंग मिल गई होवे वो कहे कि मेरे तो यार क्लियर नहीं होया हैगा भी मैंने उन्होंने कहता कि फंडिंग वापस करो अब आज तक
1: अब
0: सच दस्यो
1: बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो बताओ क्यों आप मुझे बोलो जी मेरे को ये कोर्स करना है मैं बोलूंगा नहीं है हम बोलते जी 10 कोर्स हैं 5 कोर्स है चूज करो ये तो माफ करो।
0: अच्छा इन दसा दे विचों तुसी चूज करो
1: उसमें मेजॉरिटी कोर्स कवर हो जाते हैं
0: ओके
1: जो सोखे जे ने फुली ऑनलाइन ने इजी टू पास ने असाइनमेंट्स एग्जामिनेशन ही है कि तो इस सामने कहो असी मेरे को अब बोलो कि एचपैक करना है बोलूंगा जी कॉलेज जाना पड़ेगा पास होना पड़ेगा।
0: अच्छा, नहीं हुण मेरी ये गलत हो जी हो रहा जेडी तुसी कह रहे हो सोखे जे कई बंदे कहते यार मैं ये आइल्स भी दूंगा तो मेरे 5 बैंड भी नहीं आने कई बंद कहते हैं कि मेरे 5 भी नहीं आने है जो मेरे 4 बैंड आने के मैं कोर्स पास कर सकता कि वो भी कोर्स पास कर लेने के हो जाएगा उन्होंने तो भी
1: गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें लीनियंट है बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए क्यों मतलब अगर बंदा जो नलायक है वो नलायक ही रहे या उसको मौका मिले सीधे
0: मौका मिलना चाहिए
1: मौका मिलता
0: है मौका दे रही है
1: गवर्नमेंट मौका ही
0: दे रही है
1: गवर्नमेंट का बजट है $965 million जेंडर इक्वालिटी का जो देश के अंदर नहीं खर्च होना देश के बाहर खर्च हो रहा है एशियन यूनिवर्सिटी इन अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने 5 million दिया है वहां पे एडुकेशन के लिए 8.2 million दिया वियतनाम में जेंडर इक्वालिटी राइस की खेती में $965 million बाहर था बाहर जा रहा पैसा एडुकेशन में उन चीजों जेंडर इक्वालिटी पे
0: तो पैसा तो आप इतने
1: तो ये तो इतने रहने भाई हमारा जब पैसा बाहर जा रहा है थोड़ा अपने में ही लग सकता क्या रिफ्यूजीज में 1 billion लगा अकोमोडेशन में 1 billion लगा है उनके हेल्थ केयर पे ठीक है और अब यूक्रेन की पॉपुलेशन है 37 million 30 billion तो उनको चला गया मैंने डिवाइड करा दोनों का आपस में मतलब हर बंदे को वहां पे $810 कैनेडियन डॉलर मिलना चाहिए किस बात का मिलना चाहिए भाई तो गवर्नमेंट वहां पे इतना लगा रही 4 billion एडुकेशन
0: अपनी गवर्नमेंट जो बाहर ला रही है तो अपने जो बंदे ने इतने रहते हैं जो इतने सिटीजन ने जो इतने पीआर ने परमानेंट रेजिडेंट ने वो कहते हैं कि भाई तुम पढ़ लो तुम्हें भी अभी देने
1: बिल्कुल जी
0: तुम लेने ना ही लेने तुम्हारी मर्जी है
1: वो दे रहे कैच नहीं है
0: मैं
1: बिल्कुल क्लियर कट
0: कोई ग्रे एरिया नहीं है
1: एंड देन ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਹੈ, ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਾਈਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ
2: ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ,
1: ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਮੈਂ ਅਪ ਟੂ $80,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣਤੀ ਹੈ,
2: 80,000 ਦੀ,
1: 80,000 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ, $40,000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 80,000 ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਟੈਕਸ ਫਰੀ,
2: ਅੱਛਾ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ,
1: ਇਨਕਮ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ,
2: 437-264-31-75 ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, 437-264-31-75 ਵਕਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
3: ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਹੋਮ ਫੋਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, 500, 1500 or 2000 ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰੋਜਰਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਪ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰ ਦਿਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਰੋਜਰਸ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੈਨੇਡਾ US ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਈਫੋਨ ਔਰ ਸੈਮਸੰਗ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਫੋਰ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ਹੈ 6478648000 ਅਸੀਂ 18 ਸੇ ਰੋਜਰਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਪਲਾਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਿਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਅਗੇਨ
2: 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6
0: ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਐਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਐਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਏ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ, ਨਾਜ਼ਕ ਏ ਗਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ, ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ, ਮੌਕਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਨਵੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ ਏ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਪੱਲਾ ਅੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਧੋਖਾ ਏ, ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਏ ਇਹ ਵੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ ਏ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਪੱਕੇ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਤੂੰ ਢਾ ਸਕਦਾ ਏ।

0: ट्रैफिक चक्कर लगाओ.
1: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स. बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 बजे शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट. मजा लवो संडे नो पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूजडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की की रोटी दा. ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते. डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल. कॉल एट 9057948111. सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन.
2: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो.
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन. हुणे ही कॉल करो
3: 256-6161-61. लेकिन हुण उन्होंने स्पेशल लगाया डक्ट क्लीनिंग, सिर्फ ते सिर्फ $140 देओ ते अपने डक्ट क्लीन कराओ. बड़ी ही बढ़िया ढंग नाल डक्ट क्लीन करनगे, सैनिटाइजर करके जानगे. नाल दी नाल इह हर तरह दी रिपेयर करदे ने, इंस्टॉल करदे ने, एयर कंडीशन ते फर्नेस करदे ने, इंस्टॉल करदे ने, एयर कंडीशन ते फर्नेस. www.akalduct.com. अज ही इन्हां नूं बुकिंग वास्ते कॉल कर लो
4: 0662. सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-452-3381 ते 416-457-3381 ते.
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे. हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नू कॉल करो 416-457-3381
3: AM 530.

भी यार थोड़ी जी ज्यादा ही रीमिक्स भी लग रही है मैनू। यही है यार गाना, चलो यही सुन लो।

0: आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: वेरी गुड। सो सिंपली इंडियन ते एक बार गेड़ा मार के आओ। अज दा साडा सारे दा सारा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है गेल फार्म वालों। गेल फार्म एंड प्रोड्यूस ते तुसी एक बार गेड़ा मार के आओ ते गेल फार्म ते थानूं यार हर एक किस्म की पनीरी मिल रही है। पहली गल तां डिक्सी ते किंग दे उत्ते लोकेटेड ने 14085 डिक्सी रोड 11 to 7 डेली खुलदे ने। थानूं पनीरी सारी दी सारी मिल रही है। राम तोरी, लोकी, कद्दू, भिंडी, बैंगन सारी पनीरी। तो पनीरी सिर्फ 249 $2.49 तो पनीरी है। बाकी इन्हों को सोयल मनूअर ऑरगैनिक कॉम्पोस्ट फार्म फ्रैश देसी आंडे प्योर फार्म फ्रैश हनी यानी कि शहद तो फ्रैशली मिल किया चक्की का आटा होल वीट रागी बाजरा जवार फ्लावर का जाओ तो लोकल तुसी शॉपिंग करो एट गेल फार्म कैलडन 1085 डिक्सी रोड डिक्सी एंड किंग गेल फार्म ते तुसी जरूर गेड़ा मार के आओ ते एंजॉय करो। वधिया टॉप टॉप टॉप दी डील एट गेल फार्म।